0: घर में जो है वो ऐसे नहीं रहते, घर में ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन बाहर वालों से मिलते हैं तो बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं।
1: बोले शायद वो जवानी से निकल चुके हैं, इसलिए शायद उनका खुद को ऐसा लगा।
0: क्यों कहा है ये नहीं बयान होता, जिसकी वजह से लोग जो है वो शक में पड़ जाते हैं।
1: आप उसका रिजल्ट क्या देना चाहेंगे?
0: किसी की नहीं है कोई गर्लफ्रेंड या किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है तो लोग उस पे हंसते हैं।
1: आने करना तो मुश्किल काम है, लेकिन चले खैर ये
0: पता करे हो जाए।
1: एडिट कर दीजिएगा।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुलैकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें तौफीक दी, एक मरतबा फिर हम एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का पॉडकास्ट, एक ख़ास बात उसकी ये है कि आज हमने जो है वो कुछ सवालात का इंतखाब किया है और इस पॉडकास्ट में उन सवालात के जवाब दिए जाएंगे। इन सवालों के जवाब के लिए हमारी खिदमत में हाजिर हैं अली जनाब मौलाना नुसरत बुखारी साहब क़िबला, इंशाल्लाह वो सवालात के जवाब देंगे। मौलाना की खिदमत में चलते हैं, अपना और आपका सलाम अर्ज़ करते हैं। सलाम अलैकुम मौलाना साहब, इंशाल्लाह खैर वाफियत से होंगे आप। मौलाना साहब, कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक जो है वो सबील पॉडकास्ट की टीम ने एक ऑप्शन रखा था सवालात का, जिसमें मखसूस था ख़वातीन से सवालात, कि आपके अगर कोई सवालात हों तो आप उसे पूछ सकती हैं, उसके जवाब इंशाल्लाह दिए जाएंगे। तो उसमें तकरीबन अच्छे खासे जो है वो सवालात किए गए। ख़ास कुछ चुनिंदा सवालात हैं जिन्हें हमने सेलेक्ट किया, कुछ तकरारी भी थे, रिपीट थे, इसलिए उन्हें नहीं जिक्र किया गया। उसमें एक सवाल ये था, एक खातून का सवाल है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्यों हर चीज़ जिसमें थोड़ा फ़न हो, हंसी मजाक हो या जिससे हमको थोड़ी खुशी मिले, उस पर फौरन हराम का टैग क्यों लग जाता है? यानी ये खातून समझना चाहती हैं कि दूसरे लोग जो निस्टी वगैरह में हैं वो फ़न करते हैं, मसलन अपने दोस्तों के साथ सिनेमा जाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये समझना चाहती हैं कि इस्लाम में हमें क्यों जो है रोक रखा है।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खुदावंद मुताल की बारगाह में शुक्रगुजार हैं कि परवरदिगार ने यह तौफीक अता फरमाई आपके साथ सभी मीडिया के प्लेटफॉर्म से, कि हमेशा से लोगों को बेहतरीन पैगाम और मैसेज जो है वो

0: चांसेस जाता रहता है, इसीलिए हम लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं और दरख्वास्त भी करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं, सभी मीडिया को ओवरऑल सपोर्ट करें। उसके डिफरेंट सेक्शंस हैं, कुरान है, पॉडकास्ट है, फिक है, कमेंट्स हैं, किड्स है, टून्स हैं और मवद्दत वगैरह। तो आपका सवाल बहुत अच्छा है, खातून का सवाल जो है वो एक्चुअली यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि हम एक तो किस माशरे में रहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इस्लाम कभी भी किसी तरह की तफरी को मना नहीं करता। इस्लाम और अहदीस की रोशनी में जहाँ हमें मिलता भी है कि ज़िंदगी को चंद हिस्सों में तकसीम करो, अल्लाह की इबादत में करो, अब रिस्क हलाल की भागदौड़ के लिए, फैमिली के लिए, और एक हलाल तफरी के लिए। अब ये देखना पड़ता है कि आप जिसे फ़न या दूसरे लोग फ़न कह रहे हैं कि आया वो उस हलाल के ज़ुमरे में है या नहीं है। इस्लाम किसी को नहीं रोकता, ना इस्लाम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती आराम करार दे देता है। इस्लाम कोई सख्त या रिजिड मज़हब नहीं है, इस्लाम तो दीन ऐन फितरत है, जो इंसान की नेचर है वैसे ही दीन है। अब ये कि हुदूद इलाही जो हैं अगर वो कहीं टूट रहे हैं तो ज़ाहिर है वो एक बात है कि वो ज़ाहिर चीज़ मना होगी, लेकिन हम अपने दोस्तों के साथ अगर आप वाकई एक हुदूद इलाही के साथ रहती हुई ख़वातीन अपने ख़वातीन के साथ कहीं तफरी पे जाते हैं, कहीं खाना खाने जाएं और कहीं किसी जगह पर कुछ देखने जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो मुनासिब है, जो हुदूद इलाही को पासदार नहीं करती, और फ़याम जामे के अंदर वो कोई चीज़ गुनाह नहीं कहा जाता जिसे, तो ना कोई बुरा समझा जाए माशरे के अंदर, आप उस हदूद के अंदर रहकर सारे काम कर सकते हैं, आप फैमिली के साथ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में जो जो चीज़ आप जिसे उनकी तारीफ के हिसाब से जो वो फ़न कह रहे हैं या घूमना फिरना कह रहे हैं, तो हर घूमना फिरना कोई आराम नहीं है, हर घूमना फिरना मना नहीं है। आप नेचर पे जाएं, आप पहाड़ों में जाएं, आप समंदर में ऐसी जगहों पर जाएं कि जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं अंजाम दी जा रही है कि जो अल्लाह के लिए
1: मस्जिद के खिलाफ
0: मर्जी खिलाफ काम हो। आप जाएं फैमिली के साथ जाएं, अपने दोस्त अहबाब के साथ जाएं, जो हुदूद इलाही खातून के लिए अल्लाह ने रखे हैं, हिजाब है, सारी चीज़ इनको रखती हुई जाएं, तो कोई भी मना नहीं है।
1: जी, यानी खास बात यह है कि पहले नहीं ये समझना पड़ेगा कि ये फन जो है वो आप किस माना में ले रहे
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: नहीं आपका फन से मतलब क्या है, आपका हंसी मजाक से मतलब
0: जी
1: क्या
0: अगर
1: है।
0: आप ये आपके जहन में ये है कि ना महरम महरम की मखलूत महफिलें हैं और उनके
1: मिक्स
0: साथ जाना नहीं है
1: गैदरिंग
0: खूब, वो तो ज़ाहिर इस्लाम मना करता है उसको।
1: जाहिर सी बात।
0: लेकिन अब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जहाँ पर ज़ाहिर हर जगह को एजुकेशन है, और वहाँ पर अगर आप पढ़ती हैं या पढ़ता हैं, और लेकिन आप एक दूसरे के साथ आप ज़ाहिर बात भी करनी है, क्लास है, लेकिन अगर उसके अंदर हुदूद इलाही जो अल्लाह ने हुदूद
1: रियायत
0: रखे
1: की
0: हैं
1: जा रही
0: उसका
1: है।
0: रियायत किया जा रहा है, तो आप एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, एक दूसरे से अपने इल्मी जो भी चीज़ें हैं उसको शेयर करना है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन एक एक ऐसी महफिल जहाँ हिजाब नहीं है खुदा ना खास्ता, जहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो उर्फ़ आम के अंदर भी लग रहा है कि हाँ ये मुनासिब नहीं है, तो उन चीज़ों से ज़ाहिर है आपको परहेज करना है, क्योंकि दुनियावी लज्जतें थोड़ी देर की हैं, दुनियावी खुशियाँ थोड़ी देर की हैं। हुम फिया खालिदून, तुम वहाँ हमेशा रहोगे,
1: आखरत
0: तो
1: में
0: वहाँ आखरत की लज्जत की लिए अगर दुनिया की थोड़ी सी चीज़ें ज़ाहिर में अच्छी हों लेकिन अल्लाह की बारगाह में खुदा राज़ी नहीं है, उनको तर्क कर देना बहुत अर्जिश रखता है। शायद ये बातें उस वक्त समझ में नहीं आती हैं कि जब इंसान जवानी
1: गुजरने
0: में
1: के
0: गुजर
1: बाद
0: रहा होता है,
1: इंसान को एहसास
0: लेकिन बाद
1: होता
0: में
1: है।
0: इंसान को एहसास
1: ये
0: होता
1: असल में जो है वो शायद मौलाना साहब इसका एक राज ये भी है कि चूंकि माहौल ऐसा हो चुका है आज हमारे यहाँ मसलन कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटी का, कि
0: है।
1: वहाँ पे जो है मसलन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये कल्चर इतना आम हो चुका है कि अगर मसलन किसी की नहीं है कोई गर्लफ्रेंड
0: हाँ
1: या किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है तो लोग उस पर हंसते हैं,
0: जी
1: मसलन
0: जी
1: ये कहाँ से आए हैं,
0: बैकवर्ड है क्या?
1: बैकवर्ड है क्या है।
0: देखिए इसमें बात वही है, देखिए हर इंसान को अपनी ज़िंदगी के अहदाफ, ख़ास तौर पे वो जवान बच्चे बच्चियाँ जो यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी चाहे वो बैचलर्स की डिग्री से जब इंसान स्टार्ट करता है, इंटर के बाद कॉलेज के बाद जाता है, इंसान के अंदर एक लेवल मैच्योरिटी आ जाता है, ठीक है। वहाँ पर आपको अपनी लाइफ के गोल के लिए कुछ उसूल बनाने पड़ते हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जाहिरी जिंदगी के अंदर भी किसी मकाम पे पहुंचे, किसी प्रोफेशन में पहुंचे, तो आप बगैर उसूलों के नहीं चल
1: नहीं
0: सकते।
1: चल सकते।
0: आप हैपहेज़र्ड के अंदर जिंदगी गुजारें, कॉलेज के आपके 2 साल 3 साल गुजर गए, अब आप यूनिवर्सिटी के अंदर समझ लें बैचलर्स कर रहे हैं, कहीं 3 ईयर्स का है, कहीं 4 ईयर्स का है, अगर आप सोचते हैं कि मैं बस इसी तफरी में और इसी दोस्त में और इसी में मेरे गुजर जाऊं, तो आप अपनी जिंदगी में अपने प्रोफेशन में भी क्या करेंगे? आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने भेजा है, आप खुद अपने

0: जज्बे से पढ़ने आए हैं, आप उसका रिजल्ट क्या देना चाहेंगे?
1: जी
0: क्या ये इर्तबातात के जो जायज़ नहीं है, क्या इनके साथ आप अपना वक्त गुजार कर अपने इमोशंस को तबाह करना, कितनी चीज़ें मिलती हैं, लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं जो कि जायज़ नहीं है, फिर उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता है, फिर उनकी साइकोलॉजिकल सेहत पे, दिमागी सेहत पे असर पड़ता है, फिर वैसे सोशल मीडिया का आज के दौर के अंदर इतना प्रेशर है, इतना ज़्यादा एक जवान को दबाव में पड़ा हुआ है, इतने ज़्यादा टीवी ड्रामे, नेटफ्लिक्स, इवन सीजी, पता नहीं क्या क्या चीज़ है, तो जब तक आप अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लेंगे, आप नहीं, पहले ज़माने में शायद ऐसा कम था कि आदमी चले गुजर गई इंसान आगे जाके भी अपने अहदाफ को, अपने मकसद, लेकिन अभी बहुत ज़रूरी है। अगर अभी आप अपने लिए रूटीन और चीज़ों को फिट या सेट नहीं कर पा रहे, तो बहुत जल्दी आप बेजारी का शिकार हो जाएंगे, बहुत जल्दी आप खुदा ना खास्ता किसी ऐसी गलत चीज़ में एडिक्टिव ना हो जाएं, ड्रग्स की तरफ ना चले जाएं, फलाने ना चले जाएं, गलत रास्ते पे, गलत दोस्त, गलत चीज़, और उसके बाद फिर पछतावे, और फिर बहुत चीजें आप
1: जो बाद में बड़ा संगीन हो जाता
0: बहुत
1: है।
0: संगीन है।
1: और खास तौर से मौलाना साहब देखें, ये चीजें यानी लड़कियों की तरफ से ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो इमोशनल हैं, उतूफत है उनके अंदर, मोहब्बत है। और अगर इसका सबब या रीजन अगर हम देखें कि आज जो कल्चर है, जैसे आपने अभी कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल इस टाइम जो अदा हो रहा है वो सोशल मीडिया का है।
0: जी हाँ,
1: हर घर में, हर बेडरूम में मोबाइल है, आज़ाद इंसान जो दिल चाहता है वो देखता है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि शायद माँ बाप की जिम्मेदारी
0: जी
1: ज्यादा बढ़ जाती है,
0: ज्यादा बढ़ोगा कि
1: प्यार
0: जिम्मेदारी बढ़
1: देखिए।
0: भी गई है। और दूसरे ये कि देखें, जब तक आप अपने, जैसे मैं इसी बात को, कि जब तक इंसान, जिस तरह एक कोई कंपनी काम स्टार्ट करती है, वो अपना एक विजन स्टेटमेंट बनाती है, एक अपना मिशन डिसाइड करती है, अपने 6 मंथ्स के गोल की अचीवमेंट की एक टाइमलाइन बनाती है, मैं समझता हूँ कि आज के इस मेटलिस्टिक दौर में, आज के इस AI के फास्ट दौर के अंदर, अगर इंसान चाहता है अपनी मानवियत को हिफ्स रखे, तो उसे बहुत बामकसद हरकत की ज़रूरत है, एक बामकसद मूवमेंट की ज़रूरत है। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मैंने बहरहाल ये पढ़ना है, उसमें मेरे पढ़ने के वक्त, औकात, और उसके बाद मेरा एग्ज़िट क्या है। अगर मेरे रबते, मेरी दोस्तियाँ, मेरे लेजर के जो आर्ज हैं, मेरी तब, अगर ये मुझे मेरे मकसद से दूर कर रहे हैं, मसलन कोई भी अकलमंद आदमी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि अगर आप दुनियावी काम भी कर रहे हैं, दुनियावी चीज़ें भी कर रहे हैं, तो आप अपने मकसद से क्यों दूर हो रहे हैं? क्यों आप ऐसी चीज़ों को इजाज़त दे रहे हैं कि आप अपने मकसद से, कल को जब आप खुदा ना खास्ता अपनी पढ़ाई के बाद अगर आप इसी जगह नहीं पहुँचते, हासिल नहीं करते, एक नाकामी सी है, तो ये नाकामी का जिम्मेदार कौन होगा? कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा नहीं। ये लम्हे मौला अली अलैहिस्सलाम का जो फरमान है, ये फुर्सतें बादल की तरह हैं, तो बहुत
1: अलफुर्सत तमुर मरसाब,
0: वो तो गुजर जाएगी, और आप उसके बाद इंसान पछतावा रह जाएगा। और खुदा ना खास्ता अगर ये औकात इंसान ने, एक तो होता है वक्त ज़ाया करना, एक होता है हराम में वक्त ज़ाया होना, तो असल खुदा की बारगाह में भी इंसान पछतावा लेके जाएगा। तो बेहतर है इंसान बाहदफ बामकसद जिंदगी गुजारे, कंसल्ट करे, कैरियर काउंसलिंग करे, अपने आप को देखे, और बाकायदा जहाँ
1: अपने गोल्स की
0: के
1: तरफ
0: लिए इंसान मुहासबा और मुराकबा करता है, वहाँ इंसान अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी लाइफ के लिए भी मुहासबा और मुराकबा करे, तो खुद ब खुद इंसान, और ये कोई बैकवर्ड सोच नहीं है
1: जी,
0: इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी की कामयाबी करे। बहुत से मामलों में इंसान डीड बन जाए कि अपनी ज़ात और अपने नफ्स को कामयाबी के लिए दुनिया की इन चीज़ों को अपनी ज़ात में पेनिट्रेट ना होने दे।
1: ना होने दे, यानी कि इसे हम जमा करें तो ये कह सकते हैं कि इस्लाम ने आपको मना नहीं किया है हंसी मजाक से, लेकिन बस ये है कि इस्लाम की बाउंड्रीज हैं, हुदूद हैं, आप उन्हें पार ना करें, उसके अंदर रहे कि आप हंसी मजाक करिए,
0: बिल्कुल
1: किसी ने नहीं मना किया है। ये पहला सवाल था। एक सवाल एक खातून का और है, उनका ये कहना है कि जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा का ये जुमला कि बेहतरीन औरत वो है जो ना महरम को ना देखे और ना महरम उसे ना देखें, यानी ये पूरा वो वाकया है कि जब रसूल इस्लाम अपने सहाबी को लेके आते हैं और दखल बाप करते हैं और बेटी से कहते हैं मेरे साथ मेरे सहाबी भी हैं, तो सिद्दीका तारा कहती हैं कि जो है रुक जाइए जरा मैं पर्दा कर लूँ फिर लेके आइएगा, तो ये जुमला रसूल अकरम कहते हैं कि जो है वो नाबीना है, तो फिर शहजादी ये कहती हैं कि वो नाबीना है
0: हम तो देख सकते
1: हैं। तो ये पूछना चाहती हैं कि जो है इसका यानी आगे का जो उनका मतलब है ये ज्यादा मुहिम है, वो कहती है इसका मतलब हम सिर्फ नकाब पहनकर घर में बैठे रहें बाहर ना निकले।
0: देखें, बात जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा के, हम सब जाने रूहें फिदा उनके ऊपर, असल में बात

0: तो हकीकत तो वही बयान फरमा सकती हैं, और हकीकत भी
1: जी
0: यही है जो उन्होंने बयान फरमाई है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ जब आप अहादीस और रवायात को जमा भी करते हैं, यानी आप दूसरी अहादीस और रवायात को देखते हैं, तो कहीं इस्लाम ममानियत नहीं कर रहा ये खातून के पढ़ने पर, ये खातून के काम करने पर, ये खातून के बाहर जाने पर जो ज़रूरत के तहत है, लेकिन वहीं पर उसको हिजाब और उसको सारी चीज़ें बयान कर रहा है। तो ये तो बेहतरीन ये है कि इंसान ना देखे, यानी जब उसके लिए। लेकिन आज का माशरे में जहाँ उसको बाहर जाना है, पढ़ना है, सारी चीज़ें हैं, बहरहाल इंसान देखता है। तो यहाँ दो चीज़ें देखें, एक तो ज़ाहिर है इंसान की मानवीयत, इंसान की रूह, इंसान की नीयत बहुत इम्पोर्टेंट है,
1: जी
0: और इंसान के अमाल उसकी नीयत पर हैं। देखिए दूसरी तरफ इस नीयत का इस्तेफादा, यानी इसे सूए इस्तेफादा भी नहीं कर रहे, गलत भी नहीं, लीजिए हमारी तो नीयत अच्छी थी, बाकी हम सारे काम कर रहे थे,
1: हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते
0: ऐसा
1: हैं।
0: भी नहीं है। देखिए
1: जी
0: नीयत यानी वाकई मैं बाहर जा रही हूँ, मसलन पढ़ने जा रही हूँ, मसलन मैं टीचर हूँ, मसलन मैं घर का सौदा लेने जा रही हूँ, मसलन बच्चों को ड्रॉप करने जा, हज़ार काम है, घर से बाहर निकलना है, घर से निकल कर अपने घर जाना है, घर से निकल कर बस ज़ियारत पे जा रहे हैं, मसलन आप छोड़ दें, उम्रे पे जा रहे हैं, अभी क्या करेंगे, लोग तो हैं, लोगों का तो आप इनकार नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करूं, खूब आपकी नीयत क्या है, आप घर से बाहर क्यों निकले हैं, आपका मकसद क्या, आप अपने उस हदफ की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपका मकसद है, अगर आप उसकी उस असल काम वो है जिस काम के लिए आप बाहर हैं। दूसरा क्या आप उस हुदूद इलाही को रखा हुआ है, यानी आपने वो वाजिब हिजाब वो वाजिबात है क्या वो अदा किया है। तीसरा आपके अंदर आपके कल्ब में आपके नफ्स में हया है, ये ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो दूसरी कितनी अहादीस और रवायात अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आप कलेक्टिव कर सकते हैं। यानी हम किसी एक बाज़ोगाद एक हदीस के एक टेक्स्ट को देखकर उसको उस पूरे मौजू के ऊपर हमल नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए ज़ाहिर है, क्योंकि बहरहाल वो एक हदीस एक ज़ुमरे के अंदर है। बेस्ट तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप बेस्ट तो इंसान को नकाब में जाए बेस्ट है, को आपको ना देखे, लेकिन क्या आप जिस जामे माशरे में रहते हैं वहाँ नकाब लगाने से आपको कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, ऐसी सोसाइटीज़ में तो नहीं है, जहाँ हम बाहर कई ममालिक हैं जहाँ पर बहुत सारे मुश्किल हैं,
1: जी
0: और वहाँ पर बाज़ औक़ात ऐसा हिजाब करना कि जो बहुत ज़्यादा यानी इंसान उसको और ज़्यादा मुतवज्जे हो जाए वो ज़्यादा है, लेकिन वाजिब हिजाब नहीं छोड़ना, इंसान जो वाजिब हिजाब है उसको
1: जी,
0: इंसान।
1: इसलिए हिजाब में कहा गया है कि मसलन आपका जो है वो पर्दा ऐसा ना हो कि जिससे आपके मसलन बदन जाहिर हो रहा हो, बजाय
0: हाँ
1: इसके कि हिजाब हो और लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं कि जो है
0: और
1: वो
0: बहुत सारी जगहों पर बहुत ऐसा हिजाब कर देना कि एकदम आप
1: अलग लगे।
0: अलग से नजर
1: जी
0: आए, तो वो भी मुनासिब
1: नहीं है।
0: नहीं, यानी आपको खुद ये उर्फ अपने जामे सोसाइटी के हिसाब से आपको ऐसा करना है कि जो चीज़ वाजिब है उसको ढांपना है, और एक माशरे में ताकि आम रह सके। तो यहाँ पर अगर दोनों चीज़ों को इसको खुलासा किया जाए, बस यही है जो जनाब सईद सलाम अलैहि ने फरमाया है, लेकिन दूसरी अहादीस और रवायात की रोशनी में खुद कुरान कितने जलवों को बयान फरमाता है, खुद जनाब सईद सलाम अलैहि के जो कि खुद कई हिजाबात के अंदर बाहर तशरीफ़ लेके जाती थी और गई हैं, और उन्होंने कामों का अंजाम दिया है, लेकिन विलायत का दिफा करना, विलायत के लिए जाना, मदीना के लोगों के दरवाजे खटखटाना, खूब ये सारी चीज़ें उस हदफ और मकसद को बयान करती हैं। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में हदफ जो है वो उसे वाजे करता है, और हुदूद है, खातून जानती है, अल्लाह ने उसके अंदर एक हिस रखी है, उसे पता है कि कब और क्या मुझे कोई किस तरीके से देख रहा है,
1: देख रहा है।
0: तो ये खुद उसको पता है कि उसे अपने आप की हिफाजत कैसे करनी।
1: जी। और फिर हदीस से ये नहीं समझ में आ रहा है कि मसलन बीवी का जो है मकसद ये है कि आप घर ही में रहिए
0: नहीं।
1: या जो है आप नकाब पहन लीजिए और कहीं ना जाइए,
0: नहीं।
1: क्योंकि अभी आपने इशारा किया जैसे कि खुद जो है वो सिद्दीक़ तहरा जो है वो दरबार में आ रही हैं
0: हाँ
1: विलायत की दफा के लिए,
0: हाँ
1: हिजाब में ही आ रही हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो अगर कोई ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी काम है, आपको अपना काम करना है, आपको जॉब पे जाना है,
0: कुरान
1: कहीं पे जाना
0: और
1: है।
0: तरफ भी जा रहे हैं, और अम्बिया की अजवाज की तरफ भी
1: जी
0: कुरान इशारा कर रहा है, हजरत शुएब की बेटियों का
1: जी
0: जिक्र कर रहा है, और यकीनन वो आइजा भी होंगी कि जब वो पानी लेने के लिए निकली हैं, वो इस तरह और भी बहुत
1: बहुत
0: सारी
1: सी मिसालें
0: जगहों
1: मिल जाएंगी।
0: करबला के वाक़यात के
1: जी
0: जो कि बहरहाल इस्लाम का दिफा है, और खातून के किरदार ने वहाँ बेहतरीन, और इमाम ज़माना जलाल्लाहु ताला फ़रजुल शरीफ़ मिर्ज़ा ज़हूर के लिए ख़वातीन के बेहतरीन किरदार की ज़रूरत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यानी इसका ये मतलब नहीं है, यानी शायद
0: हाँ
1: गलत
0: जी
1: जो है उन्होंने मतलब
0: हाँ
1: निकाल लिया,
0: नहीं वो
1: ऐसा
0: शायद
1: नहीं
0: सिर्फ एक ही
1: जी,
0: जाविये
1: एक
0: से सोच रहे
1: जाविये
0: हैं।
1: से
0: हाँ
1: जी।

0: खुदा का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक और सवाल देखते हैं जो है, ये खातून है, ये बड़ा अजीब सा सवाल है।
1: अजीब सा।
0: इनका ये है कि एक लड़की अपने वकार, किरदार, अपनी इज्जत को कैसे बुलंद कर सकती है? बुलंद किरदार का मतलब क्या है? क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई बुलंद किरदार हो? जो मैंने कहा कि थोड़ा अजीब सा है वो ये है
1: अच्छा,
0: कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई बुलंद किरदार हो लेकिन दीनदार ना हो?
1: देखिए बात वही है कि आप किरदार की डेफिनेशन किससे कर रहे हैं। देखिए कंपैरिजन है ना, किसी भी, मैं बोलूं जी ये स्टूडियो बहुत अच्छा है, किस जाविये से अच्छा? लाइटिंग अच्छी है या प्लेसिंग ऑफ टेबल अच्छी है या ये जो है वो
0: डेकोरेशन अच्छा है।
1: डेकोरेशन है या एडिटिंग अच्छी होगी इसकी या माइक है, साउंड सिस्टम अच्छा। अच्छा फिर मैं अच्छा किस हिसाब से, मेरे मद्देनजर क्या कोई और स्टूडियो भी हैं जिनके मुकाबले में? अब अगर आप किरदार की बात कर रहे हैं तो किरदार, अगर कैरेक्टर कहते हैं यूनिवर्सल वैल्यूज में भी, किरदार इखलाकी है, यानी इखलाक है, मोरल वैल्यूज दुनिया की, इस्लाम जिसे इखलाक कह रहा है वो इखलाक यूनिवर्सल है और वो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। यानी इंसान सब्र करना, इंसान का तहम्मुल करना, इंसान का बुर्दबार होना, यानी शख्सियत का गहरा होना, तरीके से बात करना, लोगों के अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखना, लोगों को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखना, ये यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। ये किरदार आपको दुनिया में, दीन को आप हटा भी दें तो ये किरदार आपको नजर आते हैं, लेकिन इन किरदार की असल वैल्यू उसके बातिन की वजह से है। जाहिर में मेरा किसी का अखलाक अच्छा है,
0: लेकिन
1: अगर
0: बात ही खराब है।
1: बात मिसाल के तौर पर वैसा कोई काम करता है कि जो असल हुदूद इलाही का पासदार नहीं है, तो उस किरदार को आप शायद एक दफ्तर के अंदर, शायद एक जगह पर अच्छा समझेंगे, लेकिन मिसाल के तौर पर मतलब कोई कोई ऐसा काम करता है कि जो बहुत सारे ऐसे आप माशरे में बाहर जाते हैं, बहुत अच्छे हैं ऑफिस में, बड़े अच्छे हैं, मुस्लिम नहीं है, दूसरे हैं, लेकिन वीकेंड पे वो बहरे वो ऐसे कामों को अंजाम देते हैं, खूब देते हैं, और वो तो उनकी पर्सनल है, उनकी लाइफ है, जो भी ये करे, लेकिन ऑफिस के मामला में जिस चीज को इस्लाम ने मना किया है, अगर कोई चीज हराम है, देखिए हराम इंसान की रूह पे असरात मुरतब करती है, बदन पे भी असरात मुरतब करती है, शायद वो हमें नजर आने में या टाइम लगने में ऐसे जो हम उन चीजों को कवर कर लेते हैं, लेकिन रूह इंसान की दबती चली जाती है गुनाहों के अंदर या किसी भी तरीके से अंदर। एक आदमी सच बोलता हो, सच बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसे काम करता हो कि जो अल्लाह की रजा में पसंदीदा नहीं है, उसके असरात उसके ऊपर मुरतब होते
0: मरता
1: हैं।
0: हूँ जी।
1: अब ये कि उसके उस किरदार की वजह से, उसके काम की वजह से दुनिया में खुदा उसको रिटर्न दे रहा हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो मजहबी ना हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी और मजहब से हो, लेकिन आखिरत में उसकी जगह नहीं है। असल किरदार, अगर हम किरदार की बहस करें तो हमारे लिए कुरान में आ रहा है। कुरान हमें क्या कह रहा है कि हमने तुम्हारे लिए रसूल की जात को जो उसवा
0: अस्वा
1: हसना
0: बनाया
1: करा दिया, रोल मॉडल करा दिया। अगर आप खवातीन की तरफ देखें तो फिर रसूल खुदा किन खवातीन को किरदार आपके लिए बना रहे हैं कि सैयद तो निसाइल आलमीन है,
0: बिल्कुल
1: हजरत खदीजा हैं, हजरत
0: सलाते रहते
1: मरियम हैं, हजरत जो है वो
0: आसिया हैं।
1: आसिया हैं, और बहरहाल और अजवाज पैगम्बर के जिनका किरदार बहुत अब वो किरदार क्यों बुलंद है, यानी क्या चीज है उसके अंदर? तो देखें जहां सारी चीजें हैं वहां पर वो जो चीज कुर्ब इलाही है, खुदा की बारगाह में अपने आप को पेश करना है, अपने आप को ऊपर लेके जाना है, उसके साये में सारी चीजें नजर आएंगी। दूसरी तरफ एक खातून है, बहुत इबादत करती है, बहुत तस्बीहें पढ़ती है, सारे काम करती है, मगर जबान अच्छी नहीं है,
0: जी
1: नाचिन, तो असल इसका मतलब है कि वो असल इबादत उसके ऊपर असर नहीं कर रही
0: असर
1: है
0: नहीं कर रही
1: या
0: है।
1: वो इबादत को सही समझी नहीं है। तो ये चीजें कलेक्टिव हैं, यानी दीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया और आखिरत में इंसान अगर कामयाबी चाहता है तो दीन है। दीन अगर हटा दे तो दुनिया भी जाहिरी कामयाबी जो थोड़ी देर को, खूब खवातीन ऐसी आपको तारीख में मिलेंगी मुसलमान नहीं है,
0: जो
1: मगर
0: काम अच्छे करते हैं।
1: वैल्यूज उनकी जिंदगी के थे कि जो वाकई इस्लाम जिक्र कर रहा है, तो लोग उनको याद करते हैं, लोग उनको दुनिया के अंदर याद करते हैं, ऐसी जिन्होंने एनजीओ चलाई, लोगों की खदमत की, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके उनके जाहिरी कैरेक्टर अच्छे थे और उसकी वजह से बुलंद हुए। तो ये यूनिवर्सल वैल्यूज जो

की कदरें हैं जिनको हम इकदार कहते हैं, वो पाई जाती हैं। वो हो सकता है किसी माशरे में हो, किसी सोसाइटी में हो, किसी दफ्तर में हो, किसी शहर में हो, किसी मुल्क में हो, और आप उनके किरदार को अच्छा पाएं। अगर तो वो वाकई दूसरी चीज़ें जो कि बस जिसे कहते हैं कि मासियत परवरदिगार हैं, उनमें इन्वॉल्व नहीं है, तो वो और बेहतर

0: खुदा उनको हिदायत की तरफ भी लेके जा सकता है। लेकिन ये अपने लिए रोल मॉडल रखना या ये रखना कि नहीं किरदार अच्छा होना चाहिए, दीन हो के ना हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर अल्लाह 1,24,000 को क्यों भेजता? तो अल्लाह एक किरदार की किताब है, पढ़ लो, किरदार अच्छे बना लो, बाकी जैसे चाहो रहो, जो चाहे ऐसा। तो हमारे लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने मकारम अखलाक के लिए मबूस किया है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप किरदार देखें, काफरों के साथ देखें, 13 साल मक्का के थे उसमें किरदार देखें आप, मक्का के बाद मदीना के अंदर किरदार देखें, सुलह ये फतेह मक्का पे आप किरदार देखें, रसूल खुदा ने कितने लोगों को, यानी कहाँ रसूल खुदा ने अपने अखलाक और किरदार से लोगों को जज्ब किया है। ये किरदार कर्बला के अंदर आप किरदार देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त तक कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने बेटे के कातिलों को माफ़ कर दूंगा अगर खुदा की बारगाह में तौबा कर लो। ये किरदार है, ये किरदार मारिफत परवरदिगार से हासिल होता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिंदा ऐसे रहो कि लोग तुमसे मिलना चाहें और जो मर जाओ तो लोग तुम पर
1: गिरिया करें।
0: गिरिया करें। खूब ये किरदार है, करेक्टर है। तो आप दीन को किरदार से अलग ना, असल दीन है जो आपके किरदार को संवारता है। क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप सब्र करेंगे, क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप अगले वाले को माफ़ करेंगे, कौन सी चीज़ अंगीजा है, कौन सा ऐसी चीज़ है कि जो आपको ये कहेगी कि अच्छा छोड़ दो, रहने दो, अच्छा चलो दरगुजर कर जाओ, अच्छा मैं अपना हक भी छोड़ देता हूँ, अच्छा ये मैंने फलाने के साथ ज्यादती की, नहीं मैं जाके माफ़ी मांगता हूँ, मैं उज़्र ख़ाही करता हूँ, मैंने फलाने के साथ ये किया, क्या चीज़ है ये? दीन है, वो खौफ आखिरत है,
1: जी
0: वो परवरदिगार है। ये बहुत ज़रूरी है यकीन।
1: यानी अगर हम इसे खुलासे में समझें तो ये कह सकते हैं कि यानी अच्छा किरदार ही असल में दीन है।
0: ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है।
1: यानी जब आप बाहर हैं, आप पड़ोसी के साथ कैसा अखलाक है, घर वालों के साथ कैसा
0: हाँ
1: अखलाक है, आपका बीवी के साथ कैसा अखलाक है, दोस्तों के साथ, दुश्मनों के साथ, क्योंकि हमारे साथ तारीख में सारे मंजर है
0: मन
1: कि
0: बिल्कुल
1: हमारे मासूमी जो उनका दुश्मन के साथ कैसा रवैया, आम लोगों के साथ कैसा, घर वालों, जितना अच्छा किरदार है, जितने किरदार में पाकीजगी है, इफ्फत है, उतना ही इंसान के अंदर दीन है।
0: बिल्कुल ऐसी ऐसी
1: किरदार बुलंद होता जाए, इंसान का दीन बुलंद होता चला जाएगा।
0: बिल्कुल
1: ये
0: दीन दे वही पैरेलल है चीज़ें।
1: जी
0: यानी एक आदमी इखलाकी तौर पर आपका हमसाया अच्छा है लेकिन शायद दीनदार नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते उसका अखलाक अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ एक आदमी दीनदार है, मस्जिद भी जा रहा है, शोर शराबा करता है, चीखता है, फाड़ता है, आप ये नहीं कहते यार दीनदार। इस्लाम यही कह रहा है कि सही दीन अच्छे किरदार को प्रेजेंट करता है। दूसरा ये कि बहरहाल सवाल जैसे आपसे पूछते हैं, एक लोग खवातीन का जा रहा है, ये पॉडकास्ट से रिलेटेड आप कहते ज़्यादातर सवाल आपने खवातीन से लिए हैं, तो एक सवाल ज़्यादातर लोग पूछते भी हैं ख़ासतौर पर नहज़ बलागा की रोशनी में, कि मौला ने खवातीन को नाकसुल अक्ल या उसको या उनकी अक़ल को कम जो है वो किस, हाँ क्यों कहा है या किस पैराहे में ये गुफ्तगू है, अगर आप इस पर
1: जी,
0: मुख्तसर
1: असल
0: सी रोशनी डाले।
1: में इसकी दो वजह हैं। एक तो ये है कि जब ये खुतबा बयान होता है तो लोग इसके जो है वो असल जो इसका जो पस मंजर है, बैकग्राउंड, वो बयान नहीं करते ज्यादातर लोग। एक आम बात होती है कि मौलाना ने मसलन नहजुल बलागा में कह दिया कि ये औरतें जो है नाकिसुल अक्ल हैं, नाकिसुल ईमान है, नाकिसुल मीरास है। क्यों कहा है ये नहीं बयान होता, जिसकी वजह से लोग जो है वो शक में पड़ जाते हैं कि मौलाना ने ऐसा क्यों कहा, जबकि इसकी हकीकत ये है कि जो तीनों कैटेगरी हैं, अगर नाकिसुल मीरास में देखें तो क्यों है, इसकी इल्लत वाजह है। एक औरत की जिंदगी तीन महवर है उसके, बेटी है, बहू है, माँ है। बेटी है तब भी जिम्मेदारी बाप की है, बहू है, बीवी है तो जिम्मेदारी शोहर की है, माँ है तो जिम्मेदारी जो है वो बच्चों की है। इन तीनों मरहलों में खुद औरत के ऊपर अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं,
0: सही
1: नानो नफके की, खर्च की, सब किसी ना किसी के ऊपर है। तो इस एतबार से चूंकि बैलेंस बराबर रहे, अब अगर यहाँ पे दोनों का हिस्सा बराबर होता तो फिर यहाँ पे औरत के लिए ज्यादा हो जाता, मर्द के लिए कम होता। उसको बैलेंस करने के लिए ये कहा गया कि जो है मीरास में कम है, क्योंकि वहां शुरू से पूरी जिंदगी में उसका कोई ना कोई कफील है,
0: सही है, यानी
1: तो ये बैलेंस हो गया।
0: उसको कफालत मिल रही है, उसको सब कुछ फाइनेंशियल सब कुछ
1: जी
0: मिल रहा है
1: तीनों मरहले में,
0: तीनों मरहलों में, तो अब जो तकसीम में विरासत आएगी तो उसमें ये जो परसेंटेज उसकी डिफाइन की गई है
1: जी
0: वो उसी वजह से की
1: जी नाकिसुल अक्ल का जो मरहला आता है उसमें ये जो कहा जाता है कि मौला ने कह दिया, ये जो खातून का सवाल है वो शायद बात समझी नहीं है। असल में ये खुतबा जो है वो 80 नंबर खुतबा है नहजुल बलागा का, जिसने मौलाना ये बयान किया है वो एक खास मंजर पे है और वो है जंगे जमल। मौलाना ये खुतबा उस वक्त इरशाद फरमाया था, जंगे जमल के बाद जब

0: तकरीबन यानी मौरखी ने लिखा कि 10,000 मुसलमान मारे गए जंग जमल में। और जो इनके शारे हैं इब्ने अबिल हदीर मोतजली, उन्होंने जब इस खुतबे की शरह की तो वहां पे लिखा है, तो ये खुतबा उस जंग के पैराए में था
1: ठीक
0: वहां पे जो उसको देखते हुए मौला ने बयान किया। असल बात यह है कि अब अक्ल जब हम उसकी तकसीम करें, डिवाइड करें, तो अक्ल दो है, दो तरह की है। एक अक्ल
1: राइट
0: जो है वो जाती है कुल्ली, जहां जो मासूमीन की रवायत है कि मसलन अल अक्ल माओबिदा बिर रहमान, अक्ल वो है जिसके जरिए से रहमान की इबादत की जाए। अब इसकी
1: राइट
0: जब शरह हुई तो यह कि यहाँ पे मुराद ये है कि जिसके अंदर जितनी खुदा की मार्फत है उसकी अक्ल उतनी कामिल है।
1: सही
0: अब इस हदीस में मासूम ने ये नहीं कैद लगाई कि मर्द की अक्ल हो या औरत की अक्ल हो,
1: सही
0: अक्ल जिसके यानी मार्फत का दारोमदार है, जैसे जैसे मार्फत बढ़ रही वैसे वैसे आपकी अक्ल जो है वो
1: कामिल होती जा रही
0: कामिल होती जा रही, अब
1: सही
0: चाहे औरत हो चाहे मर्द हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: सही
0: दूसरी अक्ल जो है वो अवजार, टूल्स समझ लें, उसमें क्या है कि अब ये अक्ल जो है वो इंसान जब बाहर आएगा, बिजनेस है, कारोबार है, काम करना है, घर चलाना है, मैनेजमेंट देखना है, तो ये अक्ल वहां पे इस्तेमाल हो रही है। अब चूंकि अल्लाह ने मर्द औरत को जो बनाया है उसमें खास लुत्फ है, औरत को जब पैदा किया तो उसमें मोहब्बत है, रहमत है, उतुफत है, लेकिन मर्द को ऐसा नहीं बनाया,
1: सख्त है
0: क्योंकि
1: थोड़ा सा।
0: सख्त थोड़ा कवाम और सलामत है, क्योंकि इसको जो है मैनेजमेंट देखना है, मुदीरियत करना है। जज्बात में आके औरतें फैसला जल्दी कर लेती हैं,
1: सही
0: उनके सामने आप थोड़ा इमोशनल हो जाएं या कोई ऐसी बात हो जाए तो फिर वो अक्ल से काम, ज्यादातर ऐसा होता है, कुल्ली हुक्म नहीं है, ज्यादातर कि फिर वो जज्बात में आके फैसला कर लेती है कि हाँ ये जो मसलन रो दिया, इसके आंसू निकल आए तो यही सही होगा।
1: सही है
0: इसलिए ये फर्क रखा है इमाम ने मुतवज्जे करने के लिए कि जज्बात पे जो फैसले होते हैं वो अकली कम होते हैं,
1: सही
0: जो अकल से फैसले हों वो ज्यादा जो है मुहिम है, इसलिए कहा गया है मुतवज्जे करने के लिए
1: सही है
0: कि वहां पे मोहब्बत है, रहमत है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मर्दों के अंदर, इसलिए ये तकाबुल है। कोई नक्स नहीं बयान कर रहे थे
1: सही
0: या कोई कमी, यही हाल ईमान का भी था
1: सही
0: जो नाकिसुल ईमान का है। ईमान भी है कि एक ईमान जो है वो कुल्ली है, हकीकी, जिसका इजहार कैसे होगा, इंसान के अमल और तकवे से, कि जैसे इंसान का अमल है, जैसे इंसान का तकवा है, वैसे उसका ईमान है। अब
1: सही
0: फर्क
1: बात
0: नहीं करता औरत है या मर्द, जैसे अक्ल थी,
1: सही है
0: जिसमें भी अमल है जिसमें भी तकवा है वो बाईमान है,
1: सही है
0: और एक ईमान है आरजी, ये जाहिर में जिसे हम देखते हैं। चूंकि ये खुतबा जंग जमल के पस मंजर में था और वहां पे यानी एक फैसले की वजह से 10,000 मुसलमान मारे गए हैं, तो मौलाना ने ये इरशाद फरमाया कि यहाँ पे ये ईमान की कमी है जिसकी वजह से लोग मारे जा रहे हैं,
1: सही
0: या अक्ल की कमी है जिसकी
1: जिसकी
0: वजह
1: वजह
0: से
1: से
0: जो है वो लोग, असली ये मकसद था, असली
1: सही
0: ये है जो मौला बयान, नक्स नहीं, वरना खुद मौला के घर में आप देख लें, अगर अक्ल ईमान को देखना है, सिद्दीका तारा सलामुल्लाह अलैहि ज्यादा कौन बा ईमान है, किसकी अक्ल कामिल होगी, या
1: सही
0: आपकी बेटी जनाब जनाब सलामुल्लाह अलैहा,
1: हाँ
0: आलिमा गैर मुअल्लिमा, या और आप देखें खुद उनकी कनीज जनाब फिज्जा सलामुल्लाह अलैहा,
1: हाँ
0: 20 साल कुरान की
1: यानी
0: रह चुकी
1: बहरहाल
0: है।
1: वही है कि हर चीज का एक पस मंजर है, जो भी चीज बयान की जाए और उसके कई जावी हैं और उससे इंसान को देखकर जो है वो
0: जी फैसला लेना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि शायद जो
1: इंशाल्लाह
0: आपको
1: उम्मीद है
0: जवाब होगा
1: उम्मीद है।
0: उनके जो है वो उनको काने जवाब मिला, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में फिर
1: वैसे
0: जो
1: काने करना तो मुश्किल काम है,
0: है
1: लेकिन
0: वो
1: चले खैर ये
0: खुदा
1: एडिट
0: करे हो जाए
1: एडिट कर दीजिएगा।
0: रहने दीजिए तो कमेंट बॉक्स में भी चाहे तो वो अपना जवाब और पूछ सकती है। तो बहरहाल एक और सवाल वहां साहब चलते हैं, एक खातून का है, एक जो है वो अब पता नहीं आप कुछ चाहने वाले का सवाल है, आपके लिए बहुत खास सवाल है। उनका सवाल यह है कि मौलाना साहब आजकल आपकी तवज्जो जो है जवानों की तरफ कम हो गई है। हाँ, तो क्या आप क्या ऐसी बात हो गई है कि आप जवानों की तरफ
1: हम कौन सा वो बूढ़ों की तरह तवज्जो करें, नहीं हम जिसने सवाल लिखा है उनको बोले आप बूढ़े हो गए,
0: जवान है
1: आप बूढ़े हो गए हैं, आपको इसलिए लग रहा है कि हमारी तवज्जो
0: तवज्जो कम
1: जवानों
0: हो
1: की
0: गई
1: कम हो गई, वरना हमारी तवज्जो जवानों ही पर है अल्हम्दुलिल्लाह। और जवान ही माशरा जो है वही जो है वो आगे का फ्यूचर भी है और सब कुछ
0: भाई, हमारे पास रसूल की हदीस मौजूद है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अली
1: अहले
0: जन्ना, जन्नत के जवानों
1: जन्ना
0: के सरदार है, तो फिर हमारा जयीफी और
1: अरे
0: बुढ़ापे इसका लेना देना,
1: हाँ
0: सीधा हमारा ताल्लुक सिर्फ जवानों से है।
1: बोले शायद वो जवानी से निकल चुके हैं इसलिए शायद उनको खुद को ऐसा लग रहा है
0: इंशाल्लाह खुदा पलटा दे फिर तो।
1: इंशाल्लाह।
0: अब जो है वो एक सवाल मौलाना साहब थोड़ा सा संजीदा सवाल है, तो मेरे ख्याल से जो है वो एक खातून, उनका ये सवाल है कि एक बीवी के लिए शौहर की इजाजत किस हद तक जरूरी है। वो ये कहती है कि मतलब क्या है, मतलब इसे हर काम करने से पहले शौहर की इजाजत लेना जरूरी है या सिर्फ घर से बाहर जाने के लिए शौहर की इजाजत जरूरी है।

0: देखिए, बात यह है कि शरी तौर पर तो इसके अहकाम वाजे हैं, आप जानते भी हैं, जो जिसको मुकल्लद भी तकलीद भी करता है और हदीस और रवायात की रोशनी में। बात यह है कि देखें, मियाँ बीवी एक दो ऐसे पिलर हैं जिससे घर कायम है,
1: जी
0: ठीक है, और दोनों की एक वैल्यू, दोनों का सबा यानी स्ट्रांग होना, साबित होना, इस्तकामत होना ही घर को कायम रखता है। यहाँ पर वो नहीं है कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है, ऐसा वो घर
1: कोई
0: नहीं चलता।
1: कंपटीशन नहीं है।
0: हाँ, घर नहीं चलता, घर कोऑपरेशन से चलता है, घर सेक्रीफाइस से चलता है। और हर शहर, हर मुल्क में, शहर हर कल्चर के अंदर, और इवन एक ही जगह के अंदर लोगों के ब्रॉटअप अलग हैं, लोगों का इसे कहते हैं नशोनुमा, बड़े होना अलग माहौल के अंदर है, इवन उसके अंदर भी फर्क कर जाता है। तो यहाँ पर आप दोनों का कॉपरेट होना एक दूसरे के साथ मुहिम है। जो हुक्म शरी है वो तो शरी है कि फलाने चीजें, बहुत सारे काम हैं जो शौहर की इजाजत से ही अंजाम देने हैं, लेकिन
1: जी
0: खुद शौहर का किरदार क्या वाकयन वो अपना पूरा किरदार अदा कर रहा है जो उसको करना चाहिए? क्या वो उस घर को वाकयन उस शेल्टर की तरह लेके चल रहा है कि उसके घर वाले उससे राजी हैं? ये भी बहुत मुहिम है। कुल्ली एक फार्मूला, एक कानून दे देना बाज़ औक़ात, या अखलाकी तौर पर भी बात कह देना काफ़ी नहीं होता। मौसम बहुत सी जगहों पर शोहर ही अपना किरदार सही नहीं अदा कर रहे तो खातून क्या करे? उसको तो काम करना है, उसको तो बहुत सारे ऐसे कामों के लिए कामों को अंजाम देना है। एक तो ये, दूसरे ये कि किस जुमरे में, ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज़ें कैटेगराइज हैं कि जिसमें मुझे इजाज़त
1: यानी
0: लेनी है,
1: कहाँ की इजाजत चाह रहे
0: कहाँ
1: हो
0: की इजाज़त चाहिए।
1: जी।
0: जाहिर है आप उसकी हदूद हैं, आप उसके उसकी शेल्टर के अंदर हैं, आप उसके लिए सब कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ें उसकी इजाज़त होना या उसकी रजामंदी होना ज़रूरी है। यानी ज़रूरी नहीं है कि मैं, अब एक शौहर नहीं है मिसाल के तौर पर, और एक आपको घर से कोई काम के लिए जाना है, शायद मजलिस के लिए जाना है, किसी और काम के लिए जाना है, किसी
1: हाँ मैं समझ
0: दावत में,
1: आता
0: फैमिली में
1: जी।
0: शिरकत करना है, शौहर मतलब घर पे नहीं है या कहीं काम पर गया हुआ है या कहीं काम के सिलसिले में जाता रहता है एक लंबे अरसे के लिए, तो वहाँ हर जाना या आना, जहाँ उसको ये पता है कि नहीं जाना है, मुझे जाना है, फैमिली में जाना है, फलानी जगह जाना है, दावत पे जाना है, मजलिस पे जाना है, किसी का जाना है, वो भी यहाँ शोर मुझे रोकेगा भी नहीं और मुझे जाने से मना भी नहीं करेगा। दूसरी बात, क्या वो हिफ्ज कर रही है उस शोर की अमानत को कि जो उस अल्लाह ने उसे दी हुई है, क्योंकि बहरहाल वो उसकी
1: यानी
0: उसको
1: उसका जाना शौहर की बेइज्जती का सबब ना हो।
0: हाँ सबब नहीं बने और उसकी इज्जत और नामूस उसको भी रिक्वायर्ड रखे, बाएजाब जाना बाहर, क्योंकि शौहर के पीछे खातून का बावफा होना, अमानतदार होना, खूब ये शरायत में से है कि वो उसको हिफ्स रखे, अपने वजूद को हिफ्स रखे। तो ये क्या वो कोई भी काम कर रही है, क्या उसने इन सारी चीज़ों को हिफाजत रखी हुई है? कि अगर मिसाल के तौर पर हर बात शौहर को बताने का इम्कान नहीं है या बताना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज जो उस रिश्ते को खराब कर रही हो या उस बाउंड्री को तोड़ रही हो, या मुझे बताओ कि शौहर नाराज जाएगा या उसको अच्छा नहीं लगेगा फलाने से बात करना या फलाने से इर्तिबात रखना या फलानी जगह जाना, तो ये अखलाकी तौर पर मुनासिब नहीं है कि आप क्यों अपने घर को खराब
1: खराब
0: करने के लिए, या
1: कर
0: क्यों आप अपने, अगर कोई चीज आप समझती हैं कि नहीं बेहतर है, जरूरी है, शौहर उस बात को समझ नहीं रहे हैं, तो फिर आप अपने शौहर को काने करें, यानी उसको
1: बात कर ले
0: बात
1: मुझसे।
0: करें, आप उनसे बात करें और उनको इस बात पे मनाएं कि देखें ये चीज़ ज़रूरी है और ये हमें करनी चाहिए। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता कोई आप ऐसा कोई कदम उठाएं, क्योंकि शायद बहुत छोटी सी बात हो, इतनी बड़ी बात ना हो, हराम भी ना हो, फलानी चीज़ ना हो, लेकिन आपने कोई ऐसा इकदाम उठाया, आपने ऐसा कदम किया, या आप कहीं ऐसी जगह चले गए जहाँ उनको ज़रूरत या नाराज़गी हो सकती है, तो हो सकता है इससे आपके ताल्लुकात ख़राब हों, इससे आपके घर
1: जी
0: ख़राब हों। तो ऐसा कोई काम ना करें कि जो आपके घर को ख़राब करे। तो इसीलिए आप अपने शौहर को अपने एतमाद में लें, कोई भी काम करें, कोई भी चीज़ करें, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि
1: बेहतर है कि आप
0: बता
1: बता दें, मतलब छुपाने जैसी क्या बात है। अगर
0: हाँ
1: कोई भी बात हो आप बता के जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन इसके बरक्स हो जाए, मसलन कोई बीवी बड़ी बाकमाल है, बाहया है, बाकमाल, उसने तो सारे हुदूद जो है वो रियायत किए, शौहर नहीं कर रहा।
0: हाँ बड़ा मुश्किल सवाल है ऐसे, लेकिन ये है कि खवातीन फिर ये कहती, मौलाना साहब आप खवातीन के
1: एक ही
0: हुकूक
1: तरफ बात
0: को बयान
1: करते
0: करते हैं और मर्द के हुकूक बयान नहीं करते। तो देखें, बात वही है, अगर शौहर उस चीज़ों की पासदारी नहीं कर रहा, मतलब शरी तौर पर शायद उसके पास तौजियात बहुत सारी हों
1: हैं।

0: कि वो मर्द है, वो बाहर जाता है, उसको ये है वो है, लेकिन इखलाकी तौर पर अगर आप अपना घर जो है वो जो मेन घर है, आप इंसान का मेन न्यूक्लियस उसका घर है, इंसान की वाइफ है, उसके बच्चे हैं और ये सारी चीज़ें, अगर आपका कोई भी कदम आपके उस न्यूक्लियस को ख़राब कर रहा है, आपके घर को ख़राब कर रहा है, तो फिर आप कौन सी कामयाबी, कौन सी आप चीज़ को अपने जस्टिफाई
1: जी
0: करेंगे या आप उसको पूरा करेंगे आप, मतलब जो चीज़ आपकी मेन है, अगर आप
1: वही
0: उसी
1: खराब हो
0: को
1: गया
0: नहीं बचा पा रहे
1: जी,
0: या उसको आपने नहीं बचाया, तो आप दूसरी तरफ
1: क्या कर
0: क्या
1: सकते हैं
0: इत्मीनान ढूंढ रहे हैं या क्या सुकून ढूंढ रहे हैं या कोई ऐसा जो भी काम कर रहे हैं जो अपने आपके घर की खुशहाली के लिए नहीं है, तो फिर आपकी इबादत, आपके इर्तबात, आपकी सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आपके अगर आपके अंडर में रहने वाले लोग ही बेसुकून हैं, इत्मीनान में नहीं है और ट्रस्ट में नहीं है, तो आप अपने आप को खुदा की बारगाह में कैसे पेश करेंगे? अखलाकी
1: बिल्कुल
0: तौर पर ये है, तो ये दोनों दोनों
1: बैलेंस होना
0: इम्पोर्टेंस
1: चाहिए इनका।
0: बहुत
1: और
0: ज़रूरी है।
1: बेहतर है, क्या फर्क पड़ता है कि मसलन जो है, अगर आप एक मरतबा बीवी से बता दें कि मसलन मैं फला जगह जा रहा हूँ,
0: हाँ
1: ठीक है कोई बात नहीं, उधर से इजाजत की जरूरत है कि बीवी बता के जाए, अगर शौहर बता दे तो क्या मुश्किल है, उसको भी एहसास हो जाएगा कि हाँ मतलब शौहर हमें इसका
0: नहीं,
1: समझ
0: वो
1: रहा है।
0: डेफिनेटली देखें, जब आप दोनों एक दूसरे के घर को चला रहे हैं तो दोनों को एक आपस में एक बाउंड होना बड़ा ज़रूरी है। आजकल का
1: जी
0: माशरा बड़ा
1: एतमाद बहुत
0: अग्रेसिव इतना
1: जरूरी
0: वो हो गया है, आपको पता, रिश्ते जो हैं वो वन टाइम यूज़ होने जाते हो गए हैं, शादियां जितनी तेज़ी से हैं, मुश्किल हैं को शादियों के अंदर, और उसके अलावा फिर जो सेपरेशन का रेशियो है वो भी अच्छा खासा बढ़ गया। उसकी एक वजह यही है कि रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग नहीं है, रिलेशनशिप जो है वो बाहदफ बामकसद नहीं है, बस किसी एक वजह से कोई रिश्ता कायम होता है तो वो उतनी ही तेज़ी से फिर टूट भी जाता है।
1: टूट जाता है।
0: बेहतर ये है कि अपने घर को अच्छा बनाए, और घर कुरान भी कह रहा है कि एक दूसरे के लिए तुम सुकून के लिए
1: लिबास
0: जाओ।
1: लाउन्ना लिबास
0: हाँ,
1: लकुम,
0: तो ये इसलिए है कि आप एक दूसरे के साथ इत्मीनान, और घर ऐसा हो कि इंसान जब घर आए, और आज के इस दौर के अंदर के जो इतना शोर शराबा एंड एग्जाइटी प्रेशर टेंशन, और इंसान जो है वो एक अजीब सी हालत में बाहर रहता है, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो
1: जी
0: दुनिया की सियासतें हो, पॉलिटिक्स हो, हालात दुनिया के, आपको वैसे ही पता है इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट इतनी ज़्यादा है, अनवांटेड न्यूज़ इतनी ज़्यादा है, इंसान वैसे ही डिस्टर्ब है। उस डिस्टर्बेंस में अगर इंसान का घर भी सुकून में नहीं है तो फिर कहाँ जाएगा इंसान?
1: बिल्कुल, इसी से जो है वो बिल्कुल मिलती जुलती बात, बहरहाल आपका तजुर्बा ज़्यादा होगा इसमें कि बहुत सी जो है वो यानी खातून जो है वो या बीवियाँ हैं जो अक्सर ये कहती हैं कि घर में जो है वो ऐसे नहीं रहते, घर में ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन बाहर वालों से मिलते हैं तो बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं,
0: आपकी
1: बाहर वालों से
0: शराबी
1: मिलते हैं तो
0: तो मेरा
1: जो
0: तजुर्बा भी, मैं घर में जो है
1: आप उम्र की बात कर रहे हैं, बस सब
0: वो
1: उम्र
0: उम्र
1: की
0: की
1: बात
0: बात
1: कर
0: कर रहे
1: रहे
0: हैं,
1: हैं,
0: आपने बूढ़ा बना दिया मैं। सही है, सही है,
1: शादी वाले
0: नहीं
1: निकाह ज्यादा पड़े हैं,
0: नहीं भाई, हमने निकाह तो
1: शादियों में
0: पढ़े ही नहीं है,
1: शिरकत
0: निकाह
1: तो ये ज्यादा।
0: गिने चुने शायद निकाह पढ़े, गिना
1: अच्छा
0: तो
1: तो
0: निकाह नहीं, लेकिन हाँ बहरहाल
1: बस औकात आता है ऐसा समय।
0: लोगों से मिलना मिलाना और कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इंसान अपने घर के अंदर उसका वो उन चीज़ों को, इखलाकी चीज़ों को शायद उस तरह वैल्यूज़ नहीं
1: नहीं दे
0: देता,
1: पाता
0: घर के अंदर समझता है कि मैं रिलैक्स हूँ, और लेकिन बाहर अपने जाहिरी उसको
1: अपने जो बनावटी समझ लीजिए अपने आप को बचाने के लिए कि हाँ हम अच्छे हैं ठीक है बाखलाक हैं, वो दिखाने के लिए शायद कर रहा हो। अब घर में कितनी देर करेगा, 24 घंटे उसको घर में रहना,
0: मुश्किल काम है,
1: अगर चे
0: लेकिन
1: चाहे तो
0: असल
1: शुरुआत बीवी
0: किरदार,
1: से करे,
0: असल
1: उससे
0: किरदार,
1: असल
0: असल
1: किरदार तो वही समझ में आएगा।
0: किरदार नहीं है।
1: शादी की बात हो रही थी मौलाना साहब, एक सवाल इस पे भी है, एक खातून का सवाल यह है कि आज माहौल ऐसा हो गया है गुनाह हो जाते हैं, आज प्यार मोहब्बत इश्क ये सब आम सी बात हो गई है, यानी इस पे कोई इसको बुरा ही समझता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सारी चीजें, हम क्या करें कि हमारी शादी जल्दी हो जाए।
0: ये मुझे समझ नहीं आया, बहरहाल उन्होंने के पहले सवाल क्या है, दूसरा सवाल, यानी माहौल तो ठीक है, उनकी बात समझ में आती है कि माहौल ऐसा हो गया है कि आजकल कोई चीज़ों का वैल्यूज़ नहीं रही हैं, और
1: जी
0: दुनिया बड़ी आर्टिफिशियल हो
1: रिलेशनशिप
0: गई
1: और
0: है।
1: ये सब
0: हाँ,
1: दुनिया भर की चीजें जो आ गई हैं आज माहौल में,
0: लेकिन ये सब फेक है, और ये सब
1: बिल्कुल
0: दुनिया जिसको दिखा रही है, मीडिया जिसको दिखाता है और रिलेशनशिप्स की बात करता है, टीवी ड्रामे हो या सारी चीज़ें हो, ये बहरहाल ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, ये दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जिस तरह बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, फ्रेम किया जाता है, फिर आदमी भी उसी को ढूंढ रहा होता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो इंसान बहरहाल हकीकत पे मबनी रिश्तों को कायम करे, किसी के साथ मिलना और

0: इस किसी के साथ इंसान माशरे में हो और कहीं काम करता हो, कहीं कुछ करता हो सकता है इंसान को कोई पसंद आए या कुछ आए, तो बेस्ट तरीका यही है अपने घर वालों से
1: बता दे।
0: जिक्र किया जाए, और घर वाले जो है वो जो तरीका है उस तरीके से इंसान रिश्ता जो है वो लिया जाए, और फिर उसके बाद देखा जाए कि क्या सामने वाले के साथ जो जिंदगी गुजारनी है वो गुजारी जा सकती है, क्योंकि थोड़ी देर का मिलना या थोड़ी देर का देख
1: अच्छा
0: लेना
1: लगता
0: जो है वो
1: है।
0: अच्छा लगता है, लेकिन ये कि क्या वाकई जिंदगी
1: पूरी
0: के
1: जिंदगी
0: जो
1: गुजार
0: मकसद
1: सकते
0: है,
1: हैं।
0: विजन है, पर्सनैलिटी है, क्या उस पे वैसे, और यही वजह बनी है कि लोग आज इस जाहिरी दुनिया के चक्कर में इंटरनेट पे, मीडिया पे और सोशल मीडिया के उस ग्लैमर में आकर अपने आप को चीज़ों को जब देखते हैं तो समझते हैं कि शायद यही जो है वो मकसद हयात है और यही मेरे लिए है, और ये सारी चीज़ें में बहुत तेज़ी से इंसान जुड़ते हैं और उतनी ही तेज़ी से ये
1: खत्म
0: ख़त्म
1: भी
0: हो
1: होते
0: जाते हैं,
1: हैं,
0: क्योंकि अंदर से खोखले हैं
1: फेक हैं।
0: और फेक है और शराब है, जिस तरह धूप की रोशनी में सड़क पे पानी नजर आता है,
1: लेकिन
0: ये भी
1: होता
0: दूर
1: नहीं।
0: से वैसे ही चमकता हुआ रिश्ते नजर आते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। बेहतर यही है कि जिस तरीके से इस्लाम ने कहा है, दीन ने कहा है, उस तरीके से इंसान अपने लिए शादी के अस्बाब को ढूंढे, पैदा करे। और जहाँ तक इस खातून ने कहा कि शादी के लिए क्या करें, तो बहरहाल खुदा की बारगाह में दुआ करना, अहले बैत की बारगाह तवस्सुल करना, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से तवस्सुल करें, 2 रकात नमाज पढ़ें तवस्सुल की, इस्तेगाज़े की, और जो सजदे में दुआ है या मौलाती या फातिमा तो अगैसिनी जो 500 दफ़ा पढ़ना है मुख्तलिफ तरीके से उसको अदा करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर
1: करम करेगा।
0: रिश्ता देखें। हमेशा दुआ ये मांगनी चाहिए कि अल्लाह ऐसे रिश्तों में बांधे और ऐसे रिश्ते अता करे कि जो परवरदिगार तेरी तरफ लेकर बढ़े, न कि ऐसे रिश्ते कि जो मुझे दीनों
1: दूर
0: से
1: कर
0: दूर
1: दें।
0: कर दें, मुझे दुनिया में डुबो दें, और इंसान एक मुस्तरिब इस्तराब में फंस जाए और आजमाइश और इम्तिहान के अंदर इतना पड़ जाए कि वो दीन उससे दूर हो जाए, तो दुआ करे कि इंसान उसे बचा के रखे अल्लाह ताला।
1: जी, उसमें जो है वो माना साहब, आज जो हमारा कल्चर होता जा रहा है शादी ब्याह का, वो इतना ज्यादा जो है वो तब्दील होता चला जा रहा है कि अब शादी पे भी आदमी घबराता है। एक तो ये कि जहन में सबकी फिक्र ये है कि जब तक जो है वो मसल लड़का अगर है, हम अपने पैर पर नहीं खड़े हो जाएंगे, शादी नहीं करेंगे। दूसरे उधार से ये है कि अब लड़की अगर दे रहे हैं तो जहेज होना चाहिए, खाना ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। नहीं, इतनी जो है फजूलियात इतनी ज्यादा ऐड हो गई हैं, क्या शादी करना कितना सख्त
0: मुश्किल हो
1: मर रहा,
0: गया
1: मुश्किल होता चला जा रहा है। अगरचे देखा जाए तो इस्लाम की खूबसूरती देखिए, आपको मसलन किसने कहा, इस्लाम ने कहा कि मसलन आपको एक आदमी पसंद है, ठीक है। अब शरी तरीका ये है कि आप माँ बाप से कहिए, उसके माँ बाप से बात करिए, ठीक है। अभी आप 15 साल 16 साल के हैं, आप निकाह कर लीजिए। निकाह करने के बाद आपको जो बात करनी है, जो आपको फन करना है, आप अपने शोहर से करिए, बजाय इसके कि नामहरम से हो और
0: हाँ
1: वो गुनाह हमारे ऊपर आए। आपका निकाह हो गया, वो आपका शोहर है, वो आपकी बीवी, अब आप मजाक करें, हंसी करें, जो फन करना हो करें, क्यों, आपके निकाह में है। अब 3 साल 4 साल के बाद जब ये लगे वालदैन को कि हाँ दोनों मुस्तती हैं, वो भी इस काबिल हो गया, लड़का भी और लड़की भी जो है समझदार हो गई, मैच्योर हो गई, अब आप उसकी रुखसती कर दें। इस्लाम ने रोका तो नहीं है।
0: देखिए, यहाँ पर बहरहाल मैं एक नुक्ते की तरफ अपने जवानों को, बच्चों, बेटे बेटियों को इशारा करूँगा कि बहुत सारी टीन एज के अंदर बाज़ात जो अटैचमेंट्स हैं,
1: जी,
0: क्योंकि जहन अभी बुलूगत पे नहीं पहुँचा,
1: परागंदा हो रहा है।
0: जहन
1: जी,
0: बालिग नहीं हुआ,
1: बालिग नहीं हुआ।
0: बाज़ात इंसान बहुत जल्दी करता है रिश्ते बनाने में, क्योंकि अभी जहन बन, देखें एक बदन की बुलूगत है अलग है, एक जहन की
1: जैन की
0: बुलूगत है,
1: अलग
0: मेच्योरिटी जिसे आप
1: है।
0: कहें वो आती है टाइम के साथ, आपकी अपनी लाइफ का साइकिल गुजरने, आपकी प्रोफेशन एजुकेशन के साथ आप बालिग होते। हो सकता है अभी कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, हो सकता है कि जहां आपकी जहनी बलूगत मैच्योरिटी बढ़े तो आप
1: अच्छी ना लगे।
0: आपको आप वो एडजस्ट नहीं कर पाए,
1: जी
0: यानी अच्छा लगना तो एक चलो डिफरेंट चीज़ है, बट ये कि आप उसको कोप नहीं कर पाए, फोकस नहीं कर पाए, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें ये कोई दुनियावी पैरिश आइटम या कोई गैजेट नहीं है कि आपने अभी लिया था, आपने बोला चलो बाद में मैं अपग्रेड कर लूँगा। रिश्ते हैं, रिश्ते ये एक दफ़ा बनते हैं, एक ही तरह है, एक ही चीज़ है, एक दफ़ा ये आपको ऑप्शन है, अगर आप ख़राब कर दिया तो ये नहीं है कि फिर आप इसको फिर दोबारा इसको सही तरीके से कर सके, बेहतर यही है कि आप अपने आप को भी मेच्योर होने दें और उस मेच्योरिटी के लेवल के बाद चीज़ों को डिसाइड करें,
1: जज्बात में फैसले ना हो
0: ना करें।
1: ताकि बाद में जो है पछताना ना पड़े।
0: जी बिल्कुल
1: जी,
0: बिल्कुल। दूसरा बहरहाल एक बहरहाल इसी सवाल के जुमरे में पैगाम वालदैन के लिए भी है कि वालदैन भी, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि कि बहुत सख्तियां ना किया करें, अपने
1: हाँ
0: बच्चों को समझने की कोशिश करें। जनरेशन ऐसी हो गई है कि अगर आपने अपने बच्चों के साथ दोस्ती नहीं की तो ये बच्चे बाहर करेंगे दोस्तियां, ये फिर गलत फैसले करेंगे, गलत डिसीजंस लेंगे। आप अपने घर का माहौल ऐसा रखें कि बच्चे आपसे हर बात को डिस्कस करें और आप उनसे दोस्ती करें। अगर वो कोई गलत कदम उठा रहे हैं या कोई समझते हैं कि उनके लिए कदम इम्पोर्टेंट है, तो आपका दरवाजे दिल के भी और बातों के भी इतने खुले होने चाहिए कि जब आपसे बात करें तो आप उसकी रहनुमाई कर सकें। अगर आप सख्त रहेंगे तो बच्चे शायद
1: डर के
0: आपसे
1: मारे
0: बात
1: बताएगी
0: नहीं
1: नहीं, वो
0: करेंगे।
1: एक मतलब बताएगा, बाप डर देगी या माँ डर देगी,
0: नहीं
1: दोबारा बताएगा नहीं
0: नहीं
1: फिर,
0: करेंगे,
1: और फिर वो बाहर वो तलाश करने चले जाते हैं, तो मुश्किल आती है।
0: बिल्कुल
1: जी बिल्कुल।
0: बिल्कुल।
1: एक आखिरी सवाल, और इनका ये कहना है कि एक लड़की कैसे अपने आप को इमाम का सिपाही बना सकती है, इमाम और अपने ईमान को कैसे मजबूत कर सकती है। बस इसी पे जो इंशाल्लाह इख्तिताम करेंगे, इमाम से रابطہ भी हो जाएगा और बात
0: देखिए,
1: भी हो
0: बात
1: जाएगी।
0: ये है कि डिपेंड करता है कि वो एक बच्ची किस एज के अंदर है। डेफिनेटली ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर एक टीन एज या इस तरह यही है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की एज है, उसके अंदर देखें सबसे पहली चीज़ तो अगर आपकी इबादत इम्पॉर्टेंट है, आप जो वाजिबात अदा करें वह इम्पॉर्टेंट है, आपका किरदार, आपका रिलेशनशिप आपके वालदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्त अहबाब, कॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका किरदार कैसा है, वो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली आपको, और फिर आप अपनी ज़िंदगी में किस मकसद के आगे बढ़ रही हैं, अगर आपको प्रोफेशन है, कोई एजुकेशन है, किस चीज़ को आप हासिल करना चाहती हैं और ये मकसद क्या है। अगर आप ये चाहती हैं कि एक मैं सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कोई काम करूं, माशरे को अच्छा बनाऊं, एक सोसाइटी को बेहतर करूं, एक दुनिया को अच्छा बनाऊं, मकसद इमाम ज़माना है कि मैं इमाम की हुकूमत में अपना किरदार अदा कर सकूं, अगर तो ये मकसद है तो आपकी हर चीज़ आपको इबादत की तरफ ले जाएगी।
1: जी
0: आप अपने आप को अपने इमाम के करीब पाएंगी, और उसमें ज़ाहिर है कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इमाम की सलामती की दुआ करना, इमाम के लिए सदका देना, इमाम दुआएं पढ़ना, यानी ऐसी महाफिल जिसमें इमाम का जिक्र किया जाए, दुआएं नुतबा की महफिल होना, अब ये भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ज़बानी जमजमा नहीं हो,
1: काफी नहीं है।
0: यानी मौला अली अलैहिस्सलाम भी इरशाद फरमाते हैं कि दुआ जो है वो बगैर अमल के बिल्कुल ऐसी है जैसे एक तीर अंदाज, तीर कमान जो होता है वो बगैर जरा के है, यानी आप तो अमल ही नहीं है और आप दुआ कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो है वो अपने अमल से भी शो करे, अपने किरदार से, पढ़ता हुआ अपने आसपास से शो करे कि वो इमाम के लिए काम कर रहा है। पहली चीज़ दुआ है, नीयत है, हदफ है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सर,
0: खुद ब खुद आप अपने आप को
1: इमाम
0: इमाम
1: से
0: से,
1: करें।
0: तवसल करना बहुत ज़रूरी है, खलवत में इमाम से बात करना बहुत ज़रूरी है। जो ज्यारतें वारद हुई हैं, जुम्मे की ज्यारत इमाम ज़माना की, ज्यारत आले यासीन है, इसकी तिलावत करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। 2 रकात नमाज इस्तगाज़ा हफ्ते में एक दिन पढ़ना, इशा खासतौर पर शब जुम्मा को इमाम ज़माना के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको कलेक्टिवली आपको इमाम की तरफ लेके जा सकते।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप तशरीफ लाए। आखिर में बस कुछ पैगाम
0: जी,
1: या
0: आखिर में
1: खसूसियत।
0: एक मुख्तसर सा
1: जी
0: पैगाम ये है कि एक पॉडकास्ट वो भी कीजिए कि जहाँ पर मर्दों के सवालात हों,
1: इंशाल्लाह
0: ताकि
1: इंशाल्लाह
0: सारे मर्द
1: इंशाल्लाह,
0: रात
1: उसके
0: बोलेंगे
1: बाद जो है
0: अरे
1: वो
0: आप
1: नेक्स्ट ऑप्शन
0: जो
1: उन्हीं का है,
0: तो
1: उनको भी मौका दिया
0: तीन
1: जाए,
0: सवालात लिए हैं तो मर्दों
1: उनके
0: के
1: भी
0: सवाल।
1: इंशाल्लाह
0: बहुत
1: जरूर।
0: शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको सबील मीडिया की पूरी टीम को कामयाबी अता फरमाए।
1: उम्मीद करते हैं प्रकाश आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। आपके अगर कोई सवालात हैं तो आप उसे भेज सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह जो है उसके जवाब दिए जाएंगे। दूसरे एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।
2: अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज।